0: गोली चांज जरा साकर चीजरा लूटीं जू
1: यही लंबर सदन बा काना चीजे लोटो जो
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटी रिंची
2: सिंकी ना बच्चों कुंग कम्सा ताता ने बेचे लोटी निचे ले कांग कांगी लोटी चे बेचे लोटो क्यों जुटे चुरी ह्याम ला बु रंग जो मेंट कांग ना ब्रेक ची हम जो सोए जंग रे ना वे बेचे लोटो ला या जाने बु मेटा लू दावा ये बु दाबी ता जाके चिप्जो को अंगुठो दोड़ चे शोरी लोसा हिरंगनी
3: रे रे रे टिंको वे चिरा रा ये टिंबा जोकर सगी न्यावा यंगो एंजो लंग चम जाती यार था चोमो लुदा चुंवा चीजु नमलं ये जे अच्छे अनि रंगी उ थब यार सो कांचन दर्ले नाचे दांग शंख या सको तो चेदुंग गोचु चिंदे जंग पर युमा जबा दांग लु जबा चो दोंवा जी शागु रोक दो जतांग ला चुन चें दोंग दांग चेबजी शुनी गंगो के लेगा या बुशी गुए जुकुंग ग ता दनो इन ना ला 最初，南龙有一节，我讲你人的乌头做完，代表的一百个乌头我出现个。等你刚进大来做的，铺个刚就的人呢，在龙板大了。